0: रेडियो समृद्ध नेपाल 92 मेगाहर्ट्ज।
1: रेडियो समृद्ध नेपाल स्टुडियो टाइम चेक। अहिले बिहानको ठिक 11 बजेको साथ

0: सीधा कुरा प्रश्न विचार
1: उज्यालो रेडियो नेटवर्क।
2: लोक लहरी
3: उज्यालो रेडियो नेटवर्क मा यो हो लोक लहरी।

आपको मन में लग रहा होगा महाराज जी कब साधना शुरू कराएंगे तो हम अनुभूति में उतरें। हाँ, कहते हैं कि तीखे जो सुई होता है कपड़ा सिलाने वाला, जो क्या बोलते हैं उसको, सुई, हाँ, उसके द्वारा कमल के पंखुड़ी को छेद करने में जितना समय लगता है आपको उससे भी कम समय में साधना प्राप्त हो जाएगा। क्या ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे आचार्य गण कह रहे हैं और मेरी तो अनुभव में है ही। श्रीमद् भागवत में कथा आता है, महाराजा खटवांग देवताओं को सहायता करने के लिए इंद्रलोक में गए और उनके सहायता से इंद्र ने विजय प्राप्त किया और सभी देवता प्रसन्न होकर इंद्र आदियों ने कहा, महाराज कुछ उपहार आपकी को जो कुछ इच्छा हो वरदान ले लें, आप तो काम थे, पूर्ण काम थे, उनको कोई काम आना नहीं था। उन्होंने कहा हमें श्री रघुनाथ जी की कृपा से सब परिपूर्ण है, कुछ नहीं चाहिए। देवताओं ने बहुत अनुनय विनय किया तो उन्होंने कहा ये बताओ मेरे आयु कितना है। तो सब देवताओं का चेहरा मुरझा गया क्योंकि उनकी आयु ज्यादा नहीं था, सिर्फ 2 घड़ी था। महाराज खटवांग ने कहा चिंता मत करो, जो है वो आप बता दो। बोले आपके आयु केवल 2 घड़ी है, ठीक है कोई बात नहीं, 1 घड़ी में दौड़ के आप स्वर्ग से गुरु वशिष्ठ जी के आंगन में पहुंचे और गुरुदेव को आपने पुकारा प्रभु, अब 1 घड़ी शेष रह गया, आत्मा उद्धार की कोई उपाय है इतनी कम समय में, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? श्री वशिष्ठ महाराज बोले अभी तो बहुत समय पड़ा है, पहले आप राज्याभिषेक करके आ जाओ। 1/2 घड़ी में राज्याभिषेक करके सरयू तट में पहुंचे और श्री महाराज वशिष्ठ जी के द्वारा वो दिव्य कृपा अनुग्रह हुआ। तत्काल महाराज खटवांग दिव्य पुष्पक विमान में विराजमान होकर श्री ठाकुर जी के धाम चले गए। पर अभी आपको विमान नहीं आएगा लेने, यहाँ आप न तो महाराज खटवांग है न यहाँ सरयू जी हैं। अभी गौड़ा मत, आपकी बच्चों के शादी करना होगा, कितने तमन्ने होंगे, कितने संकल्प होगा, अभी के अभी मैं आपको साकेत तो नहीं भेजूंगा। हाँ, पर यह है, गारंटी यह है कि एक बार भी जीवन में जिसने श्री राम नाम शक्तिपात प्राप्त कर लिया है, श्री जानकी नाथ जी को, हनुमान जी को, इन संतों को साक्षी रख कर कहता हूं कि जागृत स्वप्न सुसुप्त किसी भी अवस्था में आपका देह त्याग हो, राम नाम के साथ आपका जीवन छुटेगा और राम धाम आप प्राप्त करेंगे, ये गारंटी है। परंतु इसे प्राप्त करने पूर्व हमें शास्त्र की संस्कार प्राप्त करना जरूरी है। हम लोग शास्त्रों की, परंपराओं की और उपासना के मर्यादा में बंधे हुए हैं। ये दिव्य त्रिदंड धारण करके जो कुछ भी यहां से दिया जाता है रीति पूर्वक वेदोक्त रीति से सप्रमाणित आपको देना होता है, इसलिए इसकी क्रम तो हम पूरा करके ही आपको प्रदान करेंगे। गत दिन के सत्संग में आपने अर्थ पंचक के बारे में संक्षिप्त श्रवण किया था। श्री हनुमान जी ने अगस्त ऋषि से कहा कि मनुष्य को 5 अर्थ को जानना चाहिए, हम केवल भौतिक अर्थ में ही हमारा

अंतरय अर्थात वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता, इन्हें प्रस्थांतरय कहा जाता है। इसमें इन तीन तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म कैसे हैं, ब्रह्म कहाँ रहते हैं, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उनकी अवस्था क्या है, उनमें क्या विशेषताएं हैं, और जगत कैसा है, कब से है, कब तक रहेगा, कैसा है, इसकी परिणाम क्या है, और ब्रह्म और जीव दोनों को, ब्रह्म और माया दोनों के बीच में अटका हुआ ये जो मैं जीव है, ये कैसा है, ये कब से है और कब तक रहेगा, इसकी वास्तविक अवस्था क्या है, स्वरूप क्या है, इसका व्याख्या वेदों की उपनिषद खंडों ने किया है। श्री बादरायण वेद व्यास जी ने उसे सूत्रबद्ध करके ब्रह्म सूत्र हमें प्रदान किया। उसी को आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन सिद्धांत मुताबिक भाष्य किया। उसी को बोधायन जी के वृत्ति को श्री रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत दर्शन परक भाष्य किया। उसी को विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य आदि महापुरुषों ने द्वैताद्वैत, द्वैत शुद्धाद्वैत भाष्य किया। 13वीं शताब्दी में साक्षात प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री राम के अवतार भगवान रामानंदाचार्य जी ने पुनः विशिष्टाद्वैत आनंद भाष्य इन्हीं वेदांत ग्रंथों को किया, क्योंकि ये हम सब के लिए अमूल्य है। जब तक हम दर्शन को नहीं समझेंगे, तब तक जीवात्मा परमात्मा माया की स्वरूप से हम पार नहीं पा सकते। माया से पार पाने के लिए सबसे पहले आपको स्वस्वरूप बोध होना जरूरी है। जब स्वस्वरूप का बोध होगा, तब ब्रह्म स्वरूप का बोध होगा। ये सर्वप्रथम शास्त्रों के माध्यम से, गुरुमुख से आपको जानना चाहिए। आधिकारिक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा जब आप सिद्धांततः ब्रह्म, जीव और माया के स्वरूप को भलीभांति जानेंगे, तो आपका सारा ब्रह्म नष्ट हो जाएगा। उपासना के मूल मार्ग आपको मिल जाएगा। तो कल अपने संक्षेप में परब्रह्म परमात्मा की स्वरूप और जीवात्मा की स्वरूप आपने संक्षेप में श्रवण किया। जीवात्मा जो ये दिखने वाला शरीर, ये आत्मा नहीं है। जड़ और चेतन दो प्रकार की पदार्थ इस जगत में है। चेतन दो प्रकार का है, एक ईश्वर एक जीव। जड़ एक ही प्रकार का है, जिसे चित अचित कहा जाता है, अजा कहा जाता है। माया और प्रकृति ये इसी का नाम है। ये जड़ है, प्रकृति जड़ है, जीव और ईश्वर चेतन है। प्रकृति अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकती है। प्रकृति का, अचित का स्वरूप प्रकृति है, और प्रकृति का गुणधर्म क्या है, विकृति, अस्थिरता। ये प्रकृति का गुणधर्म है, विकृति ही प्रकृति का धर्म है। यदि हम प्रकृति को आश्रय होकर जीते हैं, तो हम निरंतर दुखों से ग्रसित बने रहते हैं, क्योंकि प्रकृति अज्ञानमय है, दुखमय है, परिवर्तनशील है, विकृति से युक्त है, सार विहीन है। इसीलिए हम इन प्रकृतियों के वस्तु से कभी भी
सुख प्राप्त नहीं कर सकते।

सकते हैं। इस बात को हमें ठीक से समझना जानना जरूरी है। इतनी सी बातें आपको समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी प्रकृति के वस्तुओं को प्राप्त होने पर अभिमान नहीं करेंगे, प्रकृति के वस्तुओं को नष्ट होने पर आप विलाप नहीं करेंगे, दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वस्तु को प्रकट होना और विलुप्त होना ये प्रकृति की शाश्वत धर्म है, परिवर्तन होना ये शाश्वत धर्म है। हर वस्तु तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, हम देख रहे हैं। ये गले में जो फूल आप देख रहे हैं कितना सुंदर है, पर इसी को एक दो घंटे या कल तक देखिए, ये मुरझा जाएगा। यानी परिवर्तनशील ही प्रकृति है। ये बात आप अपने मन में बैठा लोगे तो आधा दुख तो आपको यहीं समाप्त हो जाएगा। ये बड़ी चमत्कार हो जाएगा। यहां पर कोई दूसरे देव की आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आपको केवल आत्मा देव की आशीर्वाद चाहिए। हाँ, आपकी जो अंतर आत्मा है ना, उसके साथ आपकी मन की कनेक्शन होते ही आपको ये विवेक उत्पन्न हो जाएगा। इस शरीर को एक रथ माना गया है। इस शरीर में 10 प्रकार के जो इंद्रियां हैं, ये 10 घोड़े माना गया है। इन घोड़ों को नियंत्रण करने के लिए जो लगाम है वो मन है, और लगाम को जो पकड़ने वाला सारथी जो है वो बुद्धि है, और इस शरीर में बैठकर यात्रा करने वाला वो जीवात्मा है। ये बात आपको समझना है। यदि जो यात्री मालिक जो है इस शरीर का, वो जीवात्मा है, वो ठीक से बुद्धि को समझा पाएगा, बुद्धि को निर्देशन दे पाएगा, तो बुद्धि लगाम को ठीक से पकड़ के घोड़ों को जिस गति में ले जाना चाहिए, जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, उधर नियंत्रण करके ले जाएगा। यदि आत्मा की, जीवात्मा की आवाज बुद्धि नहीं सुनती है और सही डायरेक्शन में उन इंद्रिय रूपी घोड़ों को संचालन नहीं कर पाता है, तो फिर जीवन दुर्घटनाग्रसित हो जाता है। आज जो हमारी बुद्धि सारथी है, ये बहरा हो गया है। उनके और आत्मा के बीच में एक पर्दा आ गया। हम विदेश यात्रा में गए थे चाइना की तरफ, तो वहां टैक्सी में बैठे तो पीछे वाले सीट में यात्री बैठते हैं, आगे वाले में ड्राइवर, तो ड्राइवर की सीट के तरफ पूरी तरह से घेरा हुआ था। ड्राइवर और यात्री के वहां कनेक्शन होने का कोई जगह नहीं था, एक छोटा सा छेद रखा था, बस उसमें से मुंह लगा के बोलो ड्राइवर को। तो ड्राइवर को मैंने पूछा ये क्यों, बोला ये कोई कोई यात्री बड़ा बदमाश होते हैं, ड्राइवर को भीतर से कूट देते हैं या चिल्लाते हैं, इसीलिए वो ड्राइवर की रक्षा के लिए कवर किया है। तो फिर कैसे यात्रा करेंगे, उसको बताएंगे कैसे? बोले ऊपर देखो छोटा सा माइक सा छेद है, वहां से बोलना है। तो ऐसे ही आज क्या हो गया, हमारे और बुद्धि के बीच में एक पर्दा आ गया, आत्मा के और बुद्धि के बीच में एक पर्दा, जिसके चलते न तो बुद्धि आत्मा के इशारा को समझ पाता है, न आत्मा बुद्धि को निर्देशन दे पाता है। ये आत्मा जो बुद्धि को निर्देशन देता है उसको विवेक कहते हैं। जब बुद्धि में विवेक की प्रसारण हो, तब बुद्धि लगाम को नियंत्रण करता है, यानी मन को नियंत्रण करता है। मन जब नियंत्रित हो, तब हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, ये सही कर्मों में, सत कर्मों में निर्धारित रूप से ये तत्पर होकर लगते हैं। आज इंद्रिय स्वतंत्र हो गया, मन स्वतंत्र हो गया, बुद्धि भी स्वतंत्र हो गया, और मन के अधीन में बुद्धि आ गया, और इंद्रियों के अधीन में मन आ गया, जिसके चलते जीवन रूपी रथ
निरंतर पतन की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार से पहले हमें अपने शरीर को समझना है ठीक से, और ये ध्यान रखना है सुख आपको बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप स्वयं सुख स्वरूप हो, मायिक पदार्थ में सुख नहीं है। ये समस्त प्रकृति मायामय है, मायिक है। अमायिक वह जीवात्मा और परमात्मा है। जो आत्मा है ये माया की वस्तु नहीं है, इसीलिए आत्मा आनंदमय, ज्ञानमय, प्रकाशमय, सुखमय, और उस चेतन आत्मा के जो परमात्मा है वो परम आनंदमय है। जिस प्रकार से ये देह आत्मा का घर है, उसी प्रकार से आपकी आत्मा परमात्मा की घर है। ये तीनों पदार्थ कभी अलग होके नहीं रह सकते, इस बात को भी आपको जानना है। आत्मा और परमात्मा ये दोनों कभी अलग होके कदापि रह ही नहीं सकते। इसको कहते हैं अनादि अपृथक सिद्ध संबंध। आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है? अनादि अपृथक संबंध है, ये कभी पृथक नहीं हो सकते। ये सिद्ध संबंध है। सिद्ध इसीलिए कहा गया कि किसी ने जोड़ा नहीं है इसको, ये शाश्वत है और अनादि है। ये कभी पहले भी साथ में थे, अभी भी हैं और सदा रहते हैं, इसीलिए ये अनादि सिद्ध अपृथक संबंध है। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा कभी अलग रह ही नहीं सकते। जीवात्मा के बिना परमात्मा नहीं रह सकते हैं, और परमात्मा के बिना जीवात्मा का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, जैसे आत्मा के बिना शरीर की अस्तित्व नहीं है। और परमात्मा और जीवात्मा के अस्तित्व से जगत की अस्तित्व है, ये भी अलग नहीं रह सकता। प्रलय काल में ये समस्त जगत जो है बीज रूप में परमात्मा में विद्यमान होता है, और सृष्टि काल में वही विभागार यानी वह बीज, जैसे पीपल के एक छोटे से बीज में पीपल की सारी बटकी, सारे आकृति प्रकृति उसमें विद्यमान रहता है, और पर उसकी बीज कितना छोटा होता है। उसी प्रकार फिर पुनः सृष्टि काल में इस जगत प्रकट होता है। इस प्रकार से जीव, जगत और ब्रह्म, चित अचित दोनों और ईश्वर तीनों सदा नित्य संबंध रखते हैं। इस जगत में ये तीन पदार्थ है, चित अचित और ब्रह्म, ये तीन पदार्थ है। ये नित्य हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। जो मायावादियों ने कहा कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, उनका कहने के अभिप्राय जगत की कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। जब प्रातिभ ज्ञान अथवा तुरीय अवस्था में जीवात्मा पहुंच जाता है, उस समय जिस प्रपंच में जगत के द्वारा दुखी अवस्था है वो नष्ट हो जाता है, भ्रम नष्ट हो जाता है, उसकी वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाता है। उस वक्त जगत ईश्वरमय उसको दिखाई देता है, इसीलिए जगत को लोगों को समझाने के लिए मिथ्या कहा है महापुरुषों ने, अर्थात विशेष करके आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। तो ब्रह्म जीव माया ये तीनों सत्य हैं। अब इनको कैसे जाना जाए, इसको कैसे प्राप्त किया जाए, ये गुरुमुख से आपको पहले सुनना है, इसको जानना है। तो संक्षेप में हमने कल आपको बताया, आप कलयुग के जीव प्रखर बुद्धिमान होते हैं, उसमें भी वर्तमान आप लोग तो सभी शिक्षित क्वालिफाइड यहां दिखाई देते हैं हमें, इसीलिए इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या करके समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया।
ब्रह्म जीव माया ये तीनों नित्य हैं। ये तीनों भगवान के दोनों क्या हैं? जीव और माया भगवान के विशेषण हैं। भगवान विशिष्य हैं। विशेषण विशिष्य तो जानते हैं ना आप लोग, तो है भगवान का ही। अब इस प्रकार से ये समझने के बाद ब्रह्म की जो स्वरूप क्या है वो दिव्य है, परम दिव्य है, मंगलमय विग्रहवान है, भक्तों को हित के लिए, भक्तों को पालन पोषण के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वह ब्रह्म अनंत दिव्य गुणों को धारण करता है, दिव्य स्वरूपों को धारण करता है। उनके दिव्य स्वरूप को लावण्य को वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटि कंदर्प लावण्य है वो, करोड़ों करोड़ कामदेव भी जिनके स्वरूप के सामने लज्जित हो जाते हैं, ऐसे परम सुंदर परम गुणमय देदीप्य हैं श्री रघुनाथ जी। उनको हमें प्राप्त करना है। श्री हनुमान जी ने कहा अगस्त जी को, हे अगस्त जी, उनको प्राप्त करना बहुत सरल है। अब सुनिए आप ध्यान देकर, नौ उपाय श्री हनुमान जी ने भगवत प्राप्ति का बताया है। वो क्या क्या है? सर्वप्रथम सर्वभूत दया चैव

0: सर्वप्रथम उपाय हनुमान जी ने कहा, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, दुखों से निवृत्ति होना चाहते हो तो सर्वभूत दया, हाँ, समस्त प्राणियों के ऊपर दया होनी चाहिए। बस पहला साधन यही है, अपने हृदय में दया की खजाना की ढक्कन खोलो, सब पर दया करो। जब आप दया गुण को धारण करोगे तो किसी से झगड़ा कलह कुछ भी नहीं होगा, घर में भी आपको नहीं होगा, घर के खटपट में भी आप क्षमा करो, पत्नी के, पति के, बच्चों के, बंधु बांधवों के, जो कुछ भी खटपट है उस पर आप दया करते ही क्षमा गुण आप में विकसित हो जाएगा। जहां आप में क्षमा गुण विकसित हुआ तो आप में धैर्यता आ जाएगा, कोई बात नहीं बाद में ठीक हो जाएगा, ये धैर्यता आते ही आपकी दुखों की क्षण कट जाएगा। ये सूत्र है इसकी, ये क्रम, ये विज्ञान है इसका, कि केवल आप दया करो तो क्षमा गुण विकसित होगा, और क्षमा गुण विकसित होते ही धैर्यता आएगा, धैर्यता आप में होते ही दुखों की घड़ी टल जाएगी और आप सुकून के जीवन प्राप्त करेंगे, ये इसकी क्रम है। दूसरा, सर्वत्र समदर्शन। गोस्वामी तुलसीदास ने मीठी सहज सूत्रपात किया है इसमें कि सिया राम मय सब जग जानी। काकभूषुण जी विचार कर रहे हैं, सब में तो राम जी हैं, सब में प्रभु दर्शन कर रहे हैं, तो केहिसन करिए तो विरोध, विरोध किसके साथ करें जब इष्ट में परमात्मा में। आपको ये चिंतन करना है कि बिना परमात्मा का कोई भी जीव नहीं रह सकता। आपके सामने चींटी से लेकर मनुष्य आदि जो कोई भी जीवित हैं, जीवनधारी हैं, वो जीव है, उस जीव के अंदर में श्री राम जी विराजमान हैं, और वो हमें हर समय देखते ही रहते हैं, हर समय हमें सुनते ही रहते हैं, हमारी सारी चेष्टाओं के आपके अंदर बैठकर भी वो साक्षी हैं, और सामने वाले जीवों के माध्यम से भी वही साक्षी हैं। इस बात को आप केवल स्मरण करना है और कुछ मत कीजिए, हाँ, ये आप स्मरण कीजिए कि उस जीवित प्राणी के अंदर बैठकर भगवान हमें देख रहे हैं, ये समदर्शी भाव है। दूसरा समदर्शी का अर्थ होता है जिस प्रकार से हमें मान प्रतिष्ठा प्यार सुख सुविधा भूख प्यास ये सब हमारे शरीर में हमारे मन में आवश्यकता है, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव सुख चाहते हैं, हमारे तरह ही वो भी सुख चाहते हैं, हमारे तरह वो भी प्यार चाहते हैं, हमारे तरह ही वो भी प्रतिष्ठा चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, हमारे तरह वो भी तृप्त होना चाहते हैं। कोई भी जीव, केवल मनुष्य ही नहीं, जितना प्रिय आपके लिए आपकी शरीर है उतना ही प्रिय एक कुत्ते के लिए, एक सुअर के लिए, एक मच्छर के लिए, एक चींटी के लिए है। आप निर्दयी मत बनो, वो आपकी भोजन नहीं है, वो आपका विटामिन से नहीं है। मनुष्य जन्म से ही शाकाहारी प्राणी है, यदि आप मांसाहारी होते तो आपके आगे दांत दूसरे प्रकार का होता, आपके नाखून दूसरे प्रकार का होता, आप पानी चाटकर पीते, ये सब लक्षण आप में होता। जो मांसाहारी जन्म से होते हैं वो जल को चाटकर पीते हैं, उनके आगे जबड़ा जो है जबरदस्त होता है, उनके नाखून बड़ी तीखा गोल होता है, कई ऐसे लक्षण हैं। और हम मनुष्य जन्म से शाकाहारी हैं, तो जितना प्रिय आपके लिए आपका शरीर है उतने प्रिय हर प्राणी के लिए है, ये समदर्शी का एक सूत्र है। दूसरा, सुखी होना हम जितना चाहते हैं उतना ही वो भी चाहता है, ये दूसरा समयदर्शी का सूत्र है। तीसरा, हमें भूख लगता है तो उसको भी लगता है। चौथा, हमें प्यार चाहिए तो उसको भी चाहिए। ये सब समयदर्शी का सूत्र है। पहले व्यवहारिक समयदर्शी सीखो तब आत्मिक समयदर्शी में आप पहुंचोगे। एक कट्ठे आप कहोगे सियाराम मैं, तो ये उतरता नहीं है भीतर। हाँ, वहां पहुंचने के लिए आपको आत्मदृष्टा होना पड़ेगा। अच्छा, ये जितनी बातें हम बता रहे हैं ना, ये जो साधना मैं आपको दूंगा इससे आपको प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। मैं उन्हीं बातों को आपको बता रहा हूं जो निज अनुभव में आने वाला है। मैं केवल शास्त्रों की उन रहस्यों को केवल अपनी वाक्पटुता व विद्वता के लिए नहीं गा रहा हूं। विद्वता दर्शना होता तो फिर मैं सूत्र उच्चारण करता, सूत्रों को मास समास करता, फिर उसकी शब्द व्युत्पत्ति और धातु प्रत्यय में चले जाता, क्योंकि यहां विद्वता की विषय नहीं है। यहां तो हमें एक सहज बात समझना है, और नहीं हम विद्वान हैं। हमारी शिक्षा साइंस बैकग्राउंड से रहा, एक तो हम उस बैकग्राउंड से आए हैं, दूसरी हमने दिन रात गुरुचरण में बैठकर सेवा करके साधना अनुभूति की अभ्यास किया, कथाओं की अभ्यास नहीं की। ये समय उस समय हमें समझ में नहीं आए कि कथा उठा करके धन कमाया जाता है, हम तो राम जी कमाने आए, इसीलिए ये सब चीज नहीं जानते हैं। तो एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देके सुनिएगा। सर्वत्र समदर्शन, इस प्रकार से आपको सामने वाले जीव के प्रति विचार करना है। दूसरी बात आपको ये समझना है, ये जगत एक दर्पण के तरह है। दर्पण के तरह का मतलब आप दर्पण के सामने जैसा स्वरूप बनाओगे दर्पण वही आपको दिखाएगा। अर्थात आप सामने वाले जीवात्माओं के सन्मुख में जो जो कल्पना करोगे मन से वही आपके प्रति वो भी कल्पना करेगा। इसीलिए जिससे आप प्यार चाहते हो, मान चाहते हो, प्रतिष्ठा चाहते हो, तो आप भी उसको मान करो, प्यार करो, प्रतिष्ठा दो। समझे ना, ये मेरे जीवन का सत्य अनुभव है। हमारे गुरु भाई चाचा गुरुओं की बहुत बड़ी भीड़ है, बड़े लाइन है। तो हम बचपन में जिन जिन महात्माओं से मिले, उनमें से श्री महाराज जी के साथ जब मिले तो नए नए साधुओं में कुछ पता नहीं होता है, उस समय एक छोटी सी बात की उदारता भी बहुत बड़ी जीवन की सूत्र बन जाता है। क्योंकि नया वैराग्य एक तरफ चढ़ा हुआ होता है, ताजा घर द्वार साधन छोड़ के आया हुआ होता है और साधन विहीन होता है, कहां जाऊं, किसे पकड़ूं, कहां पैर रखूं पता नहीं होता है। उस समय कोई इतनी सी प्यार दे दे ना जीवन में, वो जीवन की बड़ी अमृत होती है। महाराज जी के पास अपने गुरुदेव भगवान के साथ में जब हम पहुंचे तो ऐसा स्नेह वात्सल्य आपने बरसाया, उस बात को आज 40 वर्ष 30 35 वर्ष व्यतीत हो गया। हाँ, और वो ताजगी आज भी मेरे अंदर में श्री हरिनारायण दास जी महाराज जी और श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी दोनों का आज भी बना हुआ है। ज्यादा दिन भी हमने रुके नहीं थे यहाँ पर, 2 या 3 ही दिन रुके थे गुरुदेव के साथ, पहले बार फिर दूसरे बार। उतने में आपने जो स्नेह प्रकट किया, आज उसी के परिणाम है कि आपके एक निर्देशन में हम कब यहां आऊं ये तड़पते रहे। इतने वर्षों से हिमालय में रहने के बावजूद भी हमारे मन मस्तिष्क में कंजरी विद्यमान था, और जैसे ही संकेत मिला महाराज जी का दौड़ के आए। और आपकी महानता, आपकी विनम्रता, आपकी साधुता को देखिए। आज सुबह एक विचित्र घटना घटा, रात को वो घटना घटी और सुबह महाराज श्री तिलक चंदन थाल कटोरी लोटा में जल लेके पधारे। देखिए ये त्रिदंड धारण करके साक्षात गुरु महाराज जी और संत समाज ने इस देह को भगवान रामानंदाचार्य के स्वरूप प्रदान किया है और सर्वसम्मत से यहां लोग रुपया पैसा खर्च करके जगतगुरु बनते हैं और मांगकर बनते हैं, परंतु आपको जानकर हर्ष होगा कि हमारे जीवन में ये जगतगुरु तो कल्पना बहुत दूर की रही, महंत होने का भी हमने कल्पना नहीं किया। हाँ, क्योंकि आए थे भजन करने के लिए। एक बार गुरुजनों की व्यंग्यात्मक बातें भी आशीर्वाद होता है। हरिद्वार कुंभ मेला में नासिक काले महाराज श्री का हार्ट अटैक हुआ, उनकी सेवा में दास को रहने का सौभाग्य मिला। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में आप दाखिल हुए और महाराज श्री ने रात को हमें समझाया, बेटा अब तीसरी अटैक होगी तो जीवन नहीं रहेगा, दूसरी हो चुकी है, अभी और 2-4 साल में जीऊंगा, तब तक तुम सेवा की व्यवहार सब सीख लो, व्यवहार सीख लो, साथ चलो। उस समय मैं बद्रीनाथ हिमालय में ही साधना करता था और हमें इच्छा था कि 13 करोड़ मंत्रराज की जाप पूरा करूं, तब तक 5 करोड़ की जाप हो चुकी थी। और श्री चरण में हमने निवेदन किया, ये जीवन गुरुचरण के लिए अर्पित है, जैसा आपके आदेश होगा वैसा ही करेंगे, पर एक छोटी सी लालसा मन में है, आपकी आज्ञा हो तो विनती करूं। इशारा किया उन्होंने, मुझे 13 करोड़ के अनुष्ठान पूरा करने की एक संकल्प जगा, जो मंत्र आपने प्रदान किया है तो आपकी आज्ञा हो तो उस समय कुछ नहीं बोले महाराज जी। दूसरे दिन उनके बड़े बड़े गुरु भाई लोग मिलने के लिए आए, मौनी महाराज जी गए, वो मध्य प्रदेश वाले, दूसरे बड़े पुजारी जी, प्रभुदास जी, ये लगाए तो टोली वहां आए, तो फट से प्रभुदास जी महाराज जी बोले, अरे योगीराज जी, हमें योगीराज बुलाते थे पहले आश्रम में भी, तुम बड़े पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी भी जानते हो, सब जानते हो, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को नासिक आश्रम में बैठ के संभालना चाहिए, ये वो, तो अब इधर उधर भटकना नहीं है, नासिक चले जाना है। तो सबने समर्थन किया। तो महाराज जी ने कहा अपने गुरु भाइयों से उस तरफ मुंह करके, लोग कहते हैं आजकल भजन करेंगे, मैं कहता हूं इनसे भजन न हो तो 10 हाथ के गड्ढे खोद के उसी जगह गाड़ देना, ऐसा उन्होंने बोला। हम चकित रह गए, मन में उस समय लगा अरे हमने तो कुछ ज्यादा तो कहा नहीं था, भजन ही करने को कहा था, तो महाराज जी को इतना मन में दुख पहुंचा। हमें लेके नहीं गए नासिक, गाड़ी से उतार दिया, छोड़ के चले गए, झोला भी मेरा कोई चोर ले गया, अकेला फक्कड़ बन गया मैं, शरीर में पहना हुआ केवल वस्त्र लेके बद्रीनाथ पहुंचा। देखिए गुरुओं के आशीर्वाद क्या दिव्य होता है, वो भजन के आशीर्वाद था और उनके आशीर्वाद कृपा फल स्वरूप 10 हाथ के आप 10 गज की खड्डा खोद लीजिए, उसके अंदर आप हमें 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने दफना दीजिए, बाद में आप खोद के देख लीजिएगा, ऐसे आपको मिलूंगा। और ये सत्य प्रमाणित हुआ है, ये सत्य प्रमाणित हुआ है। ये जो एकाध बार हमने लोगों के सामने साधना किया, ये किसी प्रसिद्धि के लिए नहीं, लोगों में योग के तरफ केवल इतना ही दृष्टि रह गया कि आसन प्रणायाम केवल मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस के तक सीमा रह गया, भक्ति केवल घंटी हिलाने तक रह गई। अरे भाई इससे आगे भी तो है, आप आगे बढ़ो, आपके लिए जिज्ञासा बने, इसलिए हमने सार्वजनिक रूप से साधना का 9 दिवसीय प्रदर्शन किया। कुछ लोगों ने कहा अरे समाधि सिद्ध व्यक्ति कहीं ऐसा प्रदर्शन करके फिरता है, ये तो प्रतिष्ठा का भूखा है इसीलिए ऐसा करता है, कुछ कुछ लोगों ने कहा। ऐसा नहीं होता है, सबका ये बात नहीं होती। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी पैसा कमाने के लिए द्वादश ग्रंथ लिखे? क्या वेद व्यास जी ने 18 पुराण चारों वेद की छापाखाना जो प्रेस खोला पैसा कमाने के लिए? क्या अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी चक्रवर्ती राजा परीक्षित को चेला बनाने के लिए क्या लोक प्रसिद्धि के लिए आए? ये तो जब तक हमारे महापुरुष दैविक संकेत नहीं करते हैं तब तक हमारे अंदर की आस्था नहीं जगती। यदि श्री जानकी दास जी महाराज इस तालाब के ऊपर चलकर पानी का छीटा देकर अग्नि शांत नहीं करते, भरकम भारी पत्थर को जल पर नहीं तैराते, तो क्या इस स्थान का महिमा होता आज? महापुरुष लोग, आप हमारी श्रद्धा निष्ठा के लिए सब कार्य करते हैं, उन्हीं की आज्ञा पर हुआ। तो कहने का मतलब, महाराज श्री जो है इतने इसने वात्सल्य भाजन है, और आज तो कमाल ही किया आपने, क्योंकि आप मेरे गुरुतुल्य हैं। शरीर में भले ही मैं आचार्य स्वरूप में हूं, पर हमारी जो गुरु शिष्य प्रणाली के अंदर के रिश्ते से आप चाचा गुरु हैं, आप बड़े गुरु भाई हैं। हाँ, क्योंकि हम गद्दी को ही गुरु मानते हैं, इसलिए बड़े गुरु भाई हैं। छावनी महाराज जी ने मेरे ब्रोशर पत्र पढ़ा, हमने उसमें लिखा था कि गुरुस्थान नासिक तपोवन, तो महाराज श्री बोले कि नासिक एक पादपीठ है, मूल पीठ छावनी है, इसीलिए छावनी लिखना चाहिए। तो हमारे यहां गद्दी आचार्य गुरु हमारे हम सबके भगवान रामानंदाचार्य हैं, पर माध्यम अपने सदगुरुदेव भगवान है। इस प्रकार से गद्दी को प्रधानता दी जाती, उस नाते से हम सब गुरु भाई हैं, बड़े गुरु भाई हैं, मेरे पूजनीय हैं, पर हम आचार्य स्वरूप में विराजमान हैं। इसलिए आप इस दिव्य त्रिदंड को मर्यादा रखते हैं, ये कर्तव्य है। तो मैं इस धर्म संकट में पड़ गया आज। महाराज श्री पधारे, थाली और लोटिया में जल लेकर श्री जानकी दास जी महाराज जी की आज्ञा है, आज मैं पाद प्रक्षालन करूंगा। मेरी तो भीतर से धड़कन एकदम तेजी से बढ़ गया, फटाक से मैंने अपने पैरों को वज्रासन में बांध लिया और हाथ जोड़ा, और आपके शिष्यों के द्वारा वो कार्य संपन्न हुआ। तो महाराज जी की जो साधना की ऊंचाई, देखिए विद्याम ददाति विनयम, जो ब्रह्म विद्या है उसको विनम्रता प्राप्त होता है, अमानी हो जाते हैं संत। ये दिव्य लक्षण है साधु की, उत्तम लक्षण है ये। जोरदार एक बार ओमकार करते हुए ताली बजाएं। ये बातें मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि महाराज जी मुझे मान रहे हैं, भूल के भी ऐसा अभिमान मन में नहीं आएगा। मैं महाराज जी की साधुता की प्रकाष्ठता का वर्णन कर रहा हूं। ऐसे दिव्य विभूति इस सिद्ध पीठ पर विराजमान है, और इन्हीं की कृपा से आपको ये, तो कहने का मतलब आपने बचपन में जो इसने हमें किया वही उसकी फल स्वरूप आज हमारी हृदय आपके प्रति इतनी नतमस्तक है कि हम आचार्य स्वरूप में रहने के बाद भी हम उसी स्वरूप से आपको सम्मान करते हैं जो पहले करते थे। ये मेरा फल नहीं है, ये आपका है। ऐसे ही श्री सीताराम बापू जी हैं, ऐसे सभी हमारे संत भगवान हैं। कहने का मतलब ये जगत दर्पण है जिसके सामने आप जैसा भाव से संकल्प करोगे वही फल आपको मिलेगा। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हो, उसके प्रति आपने कुछ ऐसा कल्पना किया ही नहीं, तो भी वो व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, तो समझो वो प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में कभी न कभी आपने उसको दुख दिया था, पर है आप ही का किया कराया। हाँ, आप ये कभी भूल मत करना, बड़े हम तो ठीक थे, हम तो सही थे, हम तो इसको जानते भी नहीं थे, हमने इसको कभी कुछ कहा नहीं सुना नहीं, फिर भी ये व्यक्ति हमारे ऊपर क्यों द्वेष बुद्धि रखता है, हमने इसका क्या बिगाड़ा, ऐसा आपके मन में पीड़ा हो जाता है। पर ये ठीक है, उस समय आपने नहीं बिगाड़ा, इस जन्म में नहीं बिगाड़ा, पर किसी जन्म में पहले आपने उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव रखा, इसीलिए वो आज आपको देखते ही वो आपके प्रति द्वेष बुद्धि रखता है। पर कमाई आपका है, किया कराया आपका है, काउन को सुख दुख कर दाता। हाँ, निज कर्मों के अनुसार हम ही अपनी कर्मों का फल स्वरूप सुख और दुख भोगते हैं, इसीलिए आपको मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सबसे प्यार चाहिए, तो आपको दुख देने वालों के प्रति भी आप प्यार करो, यही समदर्शी का सूत्र है। अब इसको व्याख्या ज्यादा नहीं करूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। अगर 6 महीना आप हमें यहाँ रखो तो फिर बात बने, हाँ, फिर रोज 2 घंटे आपको मैं थोड़ा थोड़ा मधु पिलाता जाऊं, हाँ, क्योंकि ये कथा नहीं है कि सुन लिया उठ के आप कथा सुन के चल दिए, ये देव नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है। क्या है बोलिए? हाँ, जीव से शिव बनने की प्रक्रिया है। एक पौधे आप जमीन में लगाओ तो उसको बढ़कर फल फूल देने में समय लगता है, तो ये मनुष्य जीवन हमारे अंदर में तमाम आसुरी प्रवृत्ति भरा हुआ है, उसको निस्तेज करते हुए हमें दैवी प्रकृति में पहुंचना है, और दैवी प्रकृति से भी देव प्रकृति शिव प्रकृति में पहुंचना है। जीव से शिव बनने की यात्रा है हमारी, नर से नारायण बनने की यात्रा है, और साधना सत्संग, साधना सत्संग दोनों साथ में चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार सत्संग सुन लिया तो हो गया। दीक्षा कान में मंत्र कुर, दक्षिणा ले इधर इधर सुर, हाँ, ऐसा नहीं होता दीक्षा। हम लोग क्या मान लेते हैं, कान फूका लो, क्या कहते हैं, कान फूकना है, कान फुकवाना है, तो एक बार गए किसी को गुरु बना लिए, कान फुकवा लिए, शब्द ले लिए और चलते बने, ऐसे दीक्षा नहीं होता, उसको दीक्षा नहीं कहते। पंच संस्कार पूर्वक दीक्षा जो ली जाती है वो तो आपको परमात्मा के विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ है, गुरुदेव के स्कूल में आप दाखिला किए हो, आपने को वो पंच संस्कार आपका आइडेंटिटी है दीक्षित होने का। जैसे विद्यार्थी को स्कूल में जाने के लिए जो टैग मिलता है पास, उस दिन से दीक्षा आरंभ होकर जब तक आपको ब्रह्म प्राप्ति नहीं होता है तब तक दीक्षा की प्रक्रिया चलता ही रहता है, और जो शिष्य इस प्रक्रिया में अपने को समर्पित करता है वही इसी जन्म में ठाकुर जी को प्राप्त कर लेता है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि आपने दीक्षा लिया और आप सिद्ध हो गए, अब परम धाम पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। अन्यत्रा निंदनम चैव, निंदा महापाप है, प्रसंग बस आपको समझाने के लिए हम लोग आचार्य गद्दी में बैठकर भी द्वैत चर्चा करते हैं, ये शिक्षा के लिए है। ऐसा मत मान लेना कि देखो आचार्य गद्दी में बैठ के आचार्य स्वयं भेद की चर्चा कर रहे हैं फिर हमें उपदेश दे रहे हैं, तो ऐसा आपके तीक्ष्ण बुद्धि में आ सकता है, धूर्त बुद्धि तो नहीं कहूंगा तीक्ष्ण बुद्धि में आ सकता है, हाँ? परंतु सत असत को निर्णय करने के लिए तो कुछ न द्वैत वाक्य बोलना ही पड़ेगा, तब ना आपको भेद पता चलेगा। परंतु ये आपके दीक्षा की दृष्टि से बोला जा रहा है, इसलिए कोई ऐसा शब्द बोल भी लिया जाए तो आप उसमें अन्यथा मत मानना, उसको सस्वरूप ग्रहण करना। कभी भी भूल से किसी को निंदा मत करो। सबसे पहले माताएं सुनो, आप अपने बच्चे की निंदा से आरंभ करते हो अपना जीवन, हाँ? कोई घर में आपके बड़े बूढ़े आ जाए ना, तो फट से बच्चे का आगे करते हो और बच्चे का शुरू कर देते हो, ये कहना नहीं मानता, ये सोता रहता है, ये खेलता रहता है, ये रोता रहता है, ये खाता रहता है, ये खाता नहीं है, ये दुबला है, ये पतला है, मोटा है, ये वो है, ये है, ये है, यहां से शुरू कर देते हैं। हमारी शुरुआत वहां से हो जाता है और करते करते हम सबको कब किसको कर चुके हमें पता ही नहीं चलता। दूसरों की चर्चा करने में, अवगुणों को चर्चा करने में हमारी जीवा लपलपाती है और सुनने में कान तरसते हैं। इस वृत्ति को हमें समाप्त करना है। यदि आप अपने इस मानव जीवन को सार्थक करना चाहते हो तो ये स्वयं साक्षात हनुमान जी अगस्त्य को समझा रहे हैं। दूसरा, शेषे स्नादिकम तथा शेष शेषी, हमारे और परमात्मा के बीच में शेष शेषी का संबंध है। जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति वो शेषी कौन है? सीधा देखने पर संत महापुरुष, भगवान के भक्त। यहां दोनों का आप लेना, दीज कहकर एक विरक्त आश्रमधारी इन वैष्णव संत महात्माओं को लेना, दूसरा जो दीक्षित जन हैं इनको भी लेना। कई बार हम घर में बड़ी गलती करते हैं, किसी के घर में पत्नी दीक्षित होती है, किसी के घर में पति, किसी के घर में बहू, किसी के घर में बेटा दीक्षित होता है और घर में सब प्रकार के भोजन चलता है, कईयों का लहसुन प्याज आमिष ये सब होता है, तो दीक्षा लेने वाला व्यक्ति इन चीजों को खाना पसंद नहीं करता है। तो घर के दूसरे लोग क्या कहते हैं, उसको गुरु को नाम लेकर, उसको वैष्णवता को नाम लेकर उसको निंदा करते हैं, गालियां देते हैं। ये देखो तुलसी की कंठी बांधा हुआ है और झूठ बोल रहा है, तुलसी की कंठी बांधा हुआ है और क्रोध कर रहा है, देखो बाबा जी का भक्त है फिर भी हमें गालियां दे रहा है, हाँ साधु होके भक्त होके ऐसा बोलते हैं, पुजारी होके ऐसा बोलते हैं, ऐसे लोग तुरंत उसको डिग्री देना शुरू कर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की
1: जय।
0: तो ध्यान देकर सुनिए, सबसे पहले घर में कोई भी सत परंपरा से पंच संस्कार पूर्वक दीक्षित यदि आपके परिवार का व्यक्ति है तो उनको सम्मान करो, उन्हें उलाना मत दो कि पूजा कर रहे हैं तो पूजा की उलाना मत दो, दीक्षा की उलाना मत दो, परंपरा की उलाना मत दो उनकी बातों पर। भाई अपना ही तो व्यक्ति है, वो तो नाराज होगा ही, कुछ कटु शब्द भी बोलेगा ही, आप फट से कह देते हो कि देखो भक्त होकर ऐसा बोलता है, साधु के पास जाता है यही सीख आया तूने, तेरा गुरु ने तुझे यही सिखाया, ये हुआ भगवान के भक्तों की निंदा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, यहां हनुमान जी कहते हैं शेषे स्नेहादिकम तथा, जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति आप भक्ति करो न करो, भक्तों से प्रेम करो, हाँ अत्यंत स्नेह करो, चाहे वो विरक्त संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई हो, सत परंपरा से भगवत मार्ग में दीक्षित है, कंठी धारण किया हुआ है, उर्दो पूर्ण तिलक धारण किया हुआ है, ऐसे विभूति को आप सम्मान करो, उन्हें प्रेम करो, उनसे विशेष प्रेम करो, ऐसा हनुमान जी ने कहा। तो इसीलिए सबसे पहले घर से शुरू करो आप, आपके घर में कोई दीक्षित कोई अदीक्षित होते हैं और इनके बीच में फाइट चलता है जोरदार, और जो दीक्षित वाले होते हैं दूसरे कहते तू पापी, हाँ दीक्षा लेने वाले भी सुनो ध्यान देकर, किसी का पत्नी, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी के बेटी बहू दीक्षित होते हैं तो दूसरे घर वाले उनको शैतान दिखते हैं और उनको गालियां देने लगते हैं, पापी कहने लगते हैं, इस प्रकार से घर में। तो पहला इस प्रकार से शुरू करते हुए, और संत महात्मा विरक्त जन तो परम पूजनीय है, उनके प्रति अपना मान के, विशेष स्वजन मान के उनसे विशेष प्रेम करो। और आगे हनुमान जी ने कहा गुराभि ईश्वर बुद्धिश्च तद आज्ञा परिपालनम, गुरुदेव को कभी मनुष्य नहीं मानना चाहिए, यद्यपि गुरु मनुष्य ही होते हैं, ये भूल कभी कभी नहीं करना आप लोग, कि हमारे तो गुरुजी शंकर जी हैं, हमारे गुरुजी शिव जी हैं, हनुमान जी, हमारे गुरुजी माता जी, हमारे गुरुजी विष्णु जी, हमारे गुरुजी ब्रह्मा जी हैं, हमारे गुरुजी फलाने जी हैं। ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये झूठ है। कभी देहधारियों को गुरु देह रहित तत्व नहीं हो सकता है, वो प्रकट होकर आपको शिक्षा नहीं दे सकता, और ऐसा कभी सृष्टि में हुआ नहीं है। हां, आप आत्मा को गुरु मांग सकते हैं, आत्मा गुरु है। आपकी विवेक बढ़ जाए, आपकी बुद्धि विवेक ख्याति हो जाए, उस वक्त आपकी आत्मा ही आपका गुरु है। इस प्रकार से स्व आत्मा को आप गुरु रूप से मान सकते हैं, परंतु हम देहधारियों के लिए देहधारी ही हमारे समान, हमारे जैसा ही स्वरूप वाला के द्वारा भगवान कृपा करते हैं। जिस प्रकार से इस सृष्टि में सृष्टि की जो परंपरा है, नाद सृष्टि और बिंदी सृष्टि, दो प्रकार से सृष्टि होता है। ये शरीर क्या है? बिंदु सृष्टि है। शरीर क्या है? बिंदु सृष्टि। बिना पिता को ये शरीर निर्माण नहीं हो सकता, इसकी परंपरा अविच्छिन्न है। जब तक महाप्रलय नहीं होगा तब तक ये परंपरा चलता ही रहेगा। उसी प्रकार से नाद सृष्टि, ज्ञान क्या है? नाद सृष्टि है। वो प्रत्यक्ष हमारे जैसे ही देवधारी मनुष्य के द्वारा भगवान ने दीक्षा की विधि बनाई है, और उस दीक्षा की विधि से ही दीक्षा ली जाती है। इसीलिए गुरु गीता में स्पष्ट कहा है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। अब देखिए, गुरु का शरीर नहीं होता है तो फिर कैसे आप गुरु मूर्ति का ध्यान करेंगे? हाँ, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो शरीर है तब ना उसका चरण है, तभी तो चरण को पूजा करेंगे। और वो वाक्य से संबोधन करता है तभी ना मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, वो बोलता है प्रत्यक्ष वाक्य से संबोधन करता है। इसीलिए उनके वाणी ही मंत्र है, और वो आपको सही मार्ग निरंतर अनुशासन में रखकर दिखाते हैं, इसीलिए वो कृपा करते हैं। तो मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरु जी के, गुरुदेव के उच्छिष्ट भोजन की बड़ी महिमा गुरु गीता में गाया गया, और गुरु चरण पादोदक की तो इतनी बड़ी महिमा है। तो आप जो काल्पनिक गुरु मन में ले आते हैं तो उनकी पादोदक कहां से मिलेगा आपको? उनकी उच्छिष्ट कहां से मिलेगा आपको? उनके वाक्य द्वारा संबोधन कहां से मिलेगा आपको? वो जो काल्पनिक गुरु है आपका, वो तो बिना देह का है, तो गुरु मूर्ति का ध्यान कैसे करोगे आप, बोलो? और मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, तो वो तो संबोधन आएगा ही नहीं आपके पास में, तो उनके वाक्य को मंत्र कैसे मानोगे आप? इसीलिए ये मानना कि मेरे गुरु अमुक देवता है, ये स्वयं के ऊपर बहुत बड़ा धोखा देना है। दूसरी, गुरु, हमारे शास्त्रों ने गुरु के पूरे लक्षण बताया है। गुरु के पूरे लक्षणों में दो ही शब्द से आपको समझना है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय का यहां दो प्रकार से समाज में अर्थ लगाया जाता है, एक संस्कृत का धुरंधर विद्वान, वेद जिनको कंठस्थ हो, शास्त्र जिन्हें कंठस्थ हो, ऐसा शास्त्रधारियों को भी श्रोत्रिय कहा जाता है। और वेद जो अध्ययन गुरुमुख से ही की जाती है तो ही श्रोत्रिय होते हैं। तो एक तो वो श्रोत्रिय हुए, और दूसरे जो श्रोत्रिय हैं, ये वेद का कोई मंत्र नहीं जानते हैं, कोई सूत्र व्याकरण ये नहीं जानते हैं, ये किसी श्लोक भी उच्चारण नहीं करते हैं, तो भी श्रोत्रिय होते हैं। वो कैसे? जो गुरुदेव भगवान अपनी परंपरा से वेद प्रतिपाद्य वेद बीज स्वरूप दिव्य तारक मंत्र जो कान में प्रदान करके हृदय में उतारते हैं वह भी श्रोत्रिय हैं और वही श्रोत्रिय हैं। समझे कि नहीं? आपने चारों संहिता को कंठस्थ कर लिया गुरुमुख से तो आप श्रोत्रिय हुए, परंतु वह श्रोत्रिय तब तक काम नहीं लगेगा जब तक ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा। शास्त्र कंठस्थ कर लेना या वेदों को ऋचाओं को गुरुमुख से सुनकर अभ्यास कर लेना मात्र से पूर्ण नहीं होगा, ब्रह्मनिष्ठ होना पड़ेगा। तो श्रोत्रिय का मतलब होता है गुरु परंपरा से दीक्षित, वहां शास्त्रों की ज्ञाता होना जरूरी नहीं है। किसी महापुरुष किसी दिन कह रहे थे कि संस्कृत न जानने वाला व्यक्ति वो गुरु नहीं बन सकता, साधु नहीं बन सकता, वो शास्त्रों की चर्चा नहीं कर सकता, इत्यादि वाक्य संबोधन कर रहे थे। उन महापुरुष की अपनी चिंतन होगी, परंतु यहां मनन करने पर प्रतीत होता है कि जो मंत्र वैदिक सनातन परंपरा में श्री गुरुदेव भगवान पंच संस्कार करके कान में प्रदान करते हैं उन्हीं को श्रोत्रिय मानना चाहिए, जानना चाहिए, वही वास्तविक श्रोत्रिय हैं। समझे कि नहीं? और उन्हीं में ही ब्रह्मनिष्ठता आ सकता है, क्योंकि जो तारक ब्रह्म मंत्र है, जो परंपरागत ऋषियों के परंपरा वेद प्रतिपाद्य जो मंत्र है, वेद बीज स्वरूप जो मंत्र है, वो श्रुति के सार है। और श्रुति के सार जो गुरु परंपरा से प्राप्त कर लिया तो श्रोत्रिय हुआ कि नहीं बताइए? उन्हें संस्कृत का पुराणों का अन्य श्लोकों को जानना ये अनिवार्य नहीं है, अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, इसके पक्ष में हमें सदा रहना है। हाँ, परंतु हमारे बहुत सारे महान सिद्ध विभूतियां अंगूठा टेक थे, क्या आप उनको श्रोत्रिय नहीं मानेंगे? क्योंकि वो श्रोत्रिय हैं, उन्हें श्रुति का वह परम तत्व श्री गुरुदेव ने हृदय में उतारा, इसलिए वो ही श्रोत्रिय हैं। केवल पोथा पढ़ने वाला पंडित श्रोत्रिय नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कई बार संस्कृतज्ञ लोग जो हैं, संस्कृत न जानने वाले लोगों को मूर्ख समझते हैं, गालियां देते हैं, अरे ये ऐसे वैसे जटाधारी भेषधारी भभूतिधारी गंजड़ी फलाने धिमकाने हैं, ये सब कहते हैं, और वो अपने को श्रोत्रिय मानते हैं, उनको मूर्ख मानते हैं। वास्तव में वो मूर्ख हैं, क्योंकि उन्होंने श्रुति का मतलब जाना ही नहीं। श्रुति जिसके श्रवण मात्र से, जिसके प्राप्त होने से एन लब्धापमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति आत्मारामो भवति आहा, हाँ? जिसके प्राप्त करने से सब पंक्ति पावनो भवति पूतो भवति, वो जहां चरण रखे वो छत्र पवित्र कर देता है। आज देखिए श्री जानकी दास महाराज जी के पावन चरणारविंद इस पवित्र भूमि में पड़ने से ये तीर्थ धाम बना कि नहीं? हाँ? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जिनके चरण के स्पर्श करने से तीर्थ तब तीर्थ बनते हैं, ये महापुरुषों की महिमा है। आपको किसी देवी देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं है, उपास से इस जगत में केवल संत महापुरुष हैं। आप संतों की उपासना करोगे तो सारा देव देवता क्या ईश्वर भी आप पर कृपालु हो जाता है। पर आप यूं समझो कि मनुष्य को क्या गुरु मानना है, हमारे जैसे खाता है, हमारे जैसे पीता है, हमारे जैसे सोता है, बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, ये करता है, क्रोध करता है, लोभ करता है, ऐसे भी कई गुरु होते हैं, इनको भी कहीं पूजा किया जाता है, ऐसा कहने वाले कुतर्की लोग भी समाज में हैं। ये इनकी कुतर्क है, अरे ये तो देह है, मनुष्य देह, ये नाशवान है, ये शरीर तो व्याधि का घर है, कोई भी बीमार होगा, कोई भी वृद्ध होगा, किसी को भी भूख लगेगा। देखिए हम लोग समाधि में रहते हैं तो भी भात खाते हैं, भूख लग जाता है, हाँ? अरे कुछ नहीं खाओ तो फलार करते हैं, वो भी नहीं करो तो दूध भी पीते हैं, वो भी नहीं पियो तो हवा भी पीते हैं, महात्मा लोग कुंभक करके बैठ जाते हैं, वो भी तो लेना ही हुआ ना। कहने का मतलब शरीर प्रकृति का है, प्रकृति में घटबड़ होता है, प्रकृति परिवर्तनशील है, इसीलिए बाल वृद्ध रोगी होना सिद्धों के लिए भी अनिवार्य है, सब होते हैं। इसके अंदाज ये नहीं लगाना कि अरे अच्छा स्वभाव, गुरु क्रोध करते हैं, गुरु लोभ करते हैं, गुरु यदि लोभ न करें, गुरु क्रोध न करे तो हम शिष्यों की कल्याण कैसे हो। वो लोभ करके हमारी प्रतिग्रह दोष को खींच लेते हैं और परमात्मा में लगा देते हैं, वो क्रोध करके हमें अनुशासन में रखते हैं। एक सत्य घटना तीर्थराज प्रयाग की, हमारे श्री उत्तरकाशी वाले पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुना, जमुना नदी इस पार से उस पार अरहेल के तरफ जाते समय नौका में एक संत और गुरु शिष्य विराजे थे, छोटा सा बालक उनका शिष्य था, एक दुष्ट व्यक्ति बगल में बैठा था बूट लगा के, और उन संतों को देखकर वो चिढ़ रहा था। छोटे बालक संत खाली पैर थे, उसने क्रोध के मारे उनके उंगली को अपने जूते के बल से जोर से दबाकर फोड़ दिया, और वो बालक संत बड़ी शक्ति लगाकर उसकी पीड़ा को सहन करते रहे करते रहे करते रहे, वो दबाता गया, माँ भगवती यमुना जी गंगा जी से सहन नहीं हुआ, बीच में हवा का ऐसा झोंक आया, अकेला वो व्यक्ति यमुना जी में विसर्जित हो गया, वो गिर गया। गोताखोर सब वहां आसपास में ही थे, मेला की समय की बातें हैं, सब घुस घुस के उसको पता लगाने लगे, कहीं उसका लाश नहीं मिला। जब नौका उस पार गया, गुरुजी ने देखा कि चेले के पैरों में तो लहू लुहान हो रखा है, उन्होंने पूछा क्या हुआ, बोले वो जो बगल में व्यक्ति बैठा जो गिर गया ना, उसने अपने पैरों से कुचल कर उंगली फोड़ दी। ऊपर से गुरुजी और उसको पिटने लगे। नौका में जो सवार लोग थे उन्होंने कहा, अरे इतना बड़ा जख्म बच्चा को हो रखा है, ऊपर से फिर गुरुजी इनको पीट रहे हैं। छुड़ाने के लिए गए और किसी ने कहा, गुरुजी इसको क्यों मार रहे हो आप, बोले ये हत्यारा है इसलिए इसको ठोक रहा हूं। कैसे, यदि इस पीड़ा को वो रो देता, चिल्लाता, उसको बहिष्कार करता तो हम लोग उस पर ध्यान देते, उसको फटकारते तो वो पाप से बच जाता, बेचारा उसकी जान चली गई। कहने का मतलब, संतों को पीड़ा पहुंचाएगा उसको भगवान सहन नहीं करते हैं। रावण का नगर कैसे जला, जैसे अनाथों के भांति, रावण का कुल में मरने पर रोने वाला भी कोई नहीं बचा, रहा न को कुल रोबनिहारा। तो संत

भगवान से भी बड़े होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो गुरा भी ईश्वर बुद्धिश्च, गुरु में साक्षात ईश्वर बुद्धि हमें रखना है। देहधारी होते हुए भी गुरु साक्षात परब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। आहा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो केवल हम गाते हैं, इसको जीवन में उतारना है। तो गुरा भी ईश्वर बुद्धिश्च, और उनमें ईश्वर बुद्धि रखने के साथ साथ तद आज्ञा, या तद का शब्द गुरुवाणी और शास्त्रवाणी दोनों को हमें लेना चाहिए। उनकी आज्ञा को हमें पालन करने में क्षण मात्र भी विलंब नहीं करना है। मात पिता गुरु आज्ञम गरीयसी, उनकी आज्ञा जो है महामहिमा मंडित होता है। यदि दशरथ जी कैकेयी की आज्ञा श्री राम जी पालन न किए होते तो क्या राम जी की इतनी बड़ी महिमा होती? इसीलिए इनकी आज्ञा आराम से पालन कर लो। एक गुरु आज्ञा की संदर्भ की एक अपने साथ घटा हुआ घटना मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश बदायूं जिले में एक संत रहते थे, बड़े ही दिव्य संत। उनके आश्रम माया कुंड रामानंद आश्रम के बगल में है, श्री वैदेही शरण जी महाराज। हमसे उनकी बहुत प्रेम थे, बड़ा ही लाडला करते थे। वो स्वरूप बनाकर पूजा करते थे, हम लोग समय निर्मल छिया साधु, तो बड़ा ही प्यार करते थे। अब भगवान भगवान कहते, राम जी बना के आरती करते थे। तो बदायूं सोई नाम के उनके आश्रम में होली के समय में हम लोग बैठे थे, तो हनुमान जी का मंदिर बन रहा था, ऊपर गुंबज की कार्य अधूरा था। उनके एक गांव का भक्त था, उसको उन्होंने आदेश दिया, ये गुंबज बनाने में 25,000 रुपया लगेगा। उसका नाम था महीपाल। ए महीपाल, तुम इसको बनाओगे, वो भी 25 दिन के अंदर 25,000 रुपया ले आओ। ऐसा आदेश उन्होंने किया। वो बेचारा बहुत गरीब आदमी था, उसकी छोटा सा झोपड़ी और दो भैंस, उसकी परिवार भरण पोषण का इतना ही साधन था। वो व्यक्ति दौड़ के मेरे पास आया, बोले भगवान आप आशीर्वाद दो कि मैं गुरु भगवान के आदेश को पूर्ण कर सकूं। क्या आदेश गुरु भगवान ने दिया? कि ये हनुमान जी के मंदिर के गुंबज के काम हमें पूरा करना है, 25,000 रुपया लगेगा, तो मैं भैंस को बेचने जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दे दो कि मेरे भैंस बिक जाए। मुझे सहन नहीं हुआ, क्योंकि उस महीपाल को हम पहले से भी जानते थे। तो मैं स्वामी जी के पास जाके कहा, स्वामी जी आप अत्याचार क्यों कर रहे हो, ऐसे गरीब आदमी से आप भैंस बेचवा रहे हो? तो स्वामी जी बड़े जोर से नाराज हुए, अरे तुम भगवान हो, भगवान बनके चुपचाप बैठे रहो वहां पर, यहाँ बीच में दखल देने क्यों आए हो, भागो उधर, भगा दिए। और डर के मारे चुपचाप हम साइड में जाके बैठ गए। वो जैसे जैसे दोनों भैंस बेच दिया और दो चार पैसे इधर उधर खोज खाज के 25,000 रुपया एक साता के अंदर में लेके स्वामी जी के हाथ में सौंप दिया उसने। देखिए गुरु कृपा क्या होता है। उसके मन में रत्ती भर भी इस बात की तकलीफ नहीं था। उसने अपनी भरण पोषण परिवार पालन की साधन ही खत्म कर दिया, और प्रसन्नता पूर्वक कुछ एकाध हफ्ते के बाद, अभी भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार की गुलाब देवी जी, वो आई, उनके साथ एक जीप वाला आया। पुराना जीप था, तेरे जीप का कितना कीमत है? इतना। बोले मैं किस्त में दे दूंगा, चाबी इसको दे दो। वो महीपाल जी को चाबी पकड़ाया, बोले अब जितनी भी ये सोई गांव में दूध है जमा करके तुम जिला में ले जाके शहर में बेच लेना, और इनको महीने के इतना किस्ता दे देना। एक साल के अंदर में उसने अपनी कर्ज चुकता कर लिया। उसी समय एक टाटा सोमो गाड़ी नया निकला था, नया गाड़ी निकाल के लेके स्वामी जी को सौंप दिया उसने। और अभी वो सेठ जी कहलाते हैं, ऋषिकेश में जाके झारा भंडारा करते हैं साल में एक बार, वो सेठ जी बन गए। तो गुरु कृपा की ये महिमा है। देखिए तो गुरा भी ईश्वर बुद्धिश्च, आप संतों की आज्ञा को भार मत मानो। तद आज्ञा परिपालनम,
शेषस्य तज्ज्ञानं च सेवनं मायया बिना।

संतों को गुरुजनों को कपट रहित होकर सेवा करो। मन में ये भाव मत रखो कि इनको मैं सेवा करूंगा, कुछ दान करूंगा तो मेरा ग्रह दूर हो जाए, मेरा बलाय टल जाए या मेरा डूबी धन आ जाए, इत्यादि अनेक हम मन में रखते हैं, इसको कहते हैं कपट। स्वार्थ रखकर दान दक्षिणा आश्रम में मंदिर में गुरुजन को करना, भक्तों को करना, लौकिक कामनाओं को लेकर उसको कपट कहलाता है। और दूसरे मन में समर्पण भाव है ही नहीं, बस मैं तो आपका ही हूं, ये और भयंकर कपट। हम लोग ये बड़े बिना विचारे ही बोल देते हैं। दूसरी, अपने गुरुदेव के सिवाय साष्टांग और किसी को नहीं करना चाहिए, चरण अनेक नहीं होने चाहिए। संतों को सबको पूजा आदर करो, आप नमन करो गुरु समान मान के, पर गुरुदेव के प्रति जो व्यवहार की जाती है वही सेम सर्वत्र नहीं किया जाता। इन सब बातों को ध्यान रखना है और विशेष भगवान के भक्तों से प्रेम करना है। और साथ साथ प्रभु कृपा लंबित्वम भोक्तव्यम तत्समर्पितम, जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है ये गुरु कृपा और भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, उससे प्रसाद बुद्धि रखिए। जो कुछ आपको प्राप्त हो रहा है ये मेरे पुरुषार्थ, मैंने कमाया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैंने भाई का शादी करवाई, बहन का, इतने बच्चों का, उसको, उनके, ये हम लोग गीत गाते हैं, ये नहीं आनी चाहिए, ये प्रभु कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। प्रभु कृपा लंबित्वम, ये भगवान की कृपा से ही मिला जो कुछ मिला है, ऐसा संतोष वृत्ति को धारण करें। और तत्समर्पितम, जो कुछ आपको चाहिए पहले भगवान को समर्पित करके प्रसाद बुद्धि से ग्रहण कीजिए, वो आपको कर्म बंधन नहीं बनेगा, नहीं तो कर्म बंधन बन जाएगा, ये हनुमान जी की आज्ञा है। और साथ में नवम उपाय हनुमान जी ने कहा, सत् शास्त्रेषु च विश्वास प्राप्त उपाय मिहुच्यते। गुरु और सत शास्त्र में विश्वास रखना है। अब यहां सत शास्त्र से थोड़ा सा मैं आपको विभेद की चर्चा करूंगा। आप जिस परंपरा में दीक्षित हैं वो परंपरा आदि वैदिक अभिछिन्न होना चाहिए, कोई 200, 400, 500 वर्षों से किसी ने शुरू किया हुआ ना हो। अध्यात्म क्षेत्र में दो मार्ग हैं, एक मेन मेड, एक गॉड मेड। ये आपको निश्चय करना है कि मेन मेड मार्ग और गॉड मेड मार्ग। मेन मेड मनुष्य के कल्पना के द्वारा बनाए हुआ मार्ग से आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकता। और भगवत प्रतिपाद्य जो सनातन मार्ग है वो गॉड मेड है। उसी के मार्ग में एक कदम भी आपका जीवन चला तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। गीता में भगवान ने कहा कि मेरे मार्ग में एक कदम भी कोई आगे बढ़ाता है तो पुनः श्रीमान पवित्र कुल, श्रीमान कुल, योगी कुल में जन्म लेता है और मेरे भक्ति के क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते मुझे प्राप्त कर लेता है। तो एक कदम भी, भूल से भी, वैदिक सनातन प्रतिपाद्य गुरु परंपरागत मार्ग में आपका पड़ जाए तो समझ लो आपका जीवन धन्य हो गया। इसीलिए गुरु बनाना जान के पानी पीना छान के कहा गया है कि आप गुरु बनाने से पहले सिद्धि विद्धि चर्चा, उनकी मधुर बातें, उनका सुंदर स्वरूप मत देखो, ये देखो कि शाश्वत सनातन परंपरा है या नहीं, पहली बात ये देखो। दूसरी, आप ये देखो कि वो अपने गुरुदेव में समर्पित है कि नहीं। खुद को तो कह रहा है गुरु को मानो, गुरु को मानो, गुरु को मानो, और खुद गुरुदेव को मान रहा है कि नहीं, ये जरूरी है। उसके गुरु है कि नहीं, अपनी गुरु परंपरा सबसे आगे रख के चलता है कि नहीं, हाँ, ये उनकी आइडेंटिटी जानना जरूरी है। इस प्रकार से आप निश्चित करके वैदिक सनातन मार्ग में पंच संस्कार पूर्वक दीक्षा ग्रहण करो और उसमें प्रतिपाद्य ग्रंथ, जो ध्येय और गेय ये गुरुदेव से जाना जाता है,
गुरुदेव आपको भगवान के कौन से स्वरूप को किस प्रकार से ध्यान करना है ये सिखाते हैं। ऐसा मनमाने इष्ट नहीं बनाया जाता है। आप लोग कहते हो ना मेरे तो अमुक कुल देवता, अमुक इष्ट देवता, अमुक इष्ट देवता, मनमाने बना, ऐसा नहीं होता है। विवाह से पूर्व वो कन्या, वो वर, वो पुरुष हर स्त्री में अपनी पत्नी को ढूंढता है, पर कोई उसकी पत्नी जब तक विधि न हो नहीं होता। वो कन्या भी अब हर पुरुष में अपने पति को ढूंढती है और किन्हीं एक में वो अपने पति या पत्नी को पाते हैं। जब समाज, कुल, रीति रिवाज के तरीके से विवाह बंधन में बंध जाने के बाद, गवर्नमेंट से स्वीकृति भी लेने के बाद, तब आप एक दूसरे को इष्ट हुए पति पत्नी। उसी प्रकार से श्री गुरुदेव भगवान आपको परमात्मा के साथ में स्वयं साक्षी बैठकर, गुरुदेव दीक्षा देते समय जो परंपरागत अधिकारी गुरु जो है ना, आपको दीक्षा देते समय सबसे पहले क्या करते हैं, आपके नाम से संकल्प करके, हे प्रभु आज तक इसने जन्म जन्म से जो कुछ पाप किया है उसकी साक्षी मैं बैठ जाता हूँ, आप उसको माफ कर दीजिए, इसने जो कर्म किया इसकी कर्म की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और आज के बाद भी जो कर्म करेगा ये उसका भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप बस इसको अपना लो। दीक्षा में क्या होता है, श्री गुरुदेव जी आपके कर्मों की, प्रारब्धों की, पापों की, सब पुण्य की स्वयं साक्षी बैठकर जिम्मेवारी लेकर आपको भगवान के चरण में, जैसे पिता अपनी पुत्री के हाथ पकड़ के दामाद के हाथ में पकड़ा देते हैं, उसी प्रकार से हे प्रभु यह जीव आज के बाद आपका है, इस प्रकार से गुरुदेव समर्पण कर देते हैं। इसीलिए गुरु भगवान की इतनी बड़ी महिमा है। उसके बाद पहले किए हुए पाप के दसवां हिस्सा गुरु भोगते हैं, और दीक्षा लेने के बाद जितना पाप करता है सारा गुरु को भोगना पड़ता है। जो आप अपने गुरुदेव को कभी रोगी कभी बंदाम जो देखते हो ना, ये चेलों की पाप के फल भोगते हैं। वो जानने वाले संत जल्दी दीक्षा नहीं देते हैं। दीक्षा देने वाला या तो उद्धारक होता है या बेवकूफ होता है। हाँ, ये जान लीजिएगा। तो इस प्रकार से दीक्षा देकर भगवान आपका इष्ट बन गए। अब आपके प्रकृति को देखते हुए गुरुदेव संबंध जोड़ देते हैं भगवान से। वात्सल्य भाव का संबंध जोड़ना है, या साख्य भाव का, या दास्य भाव का, या शांत रस भाव का, या माधुर्य रस भाव का एक संबंध जोड़ देते हैं गुरुदेव भगवान। साथ में रिश्ता जुड़ गया अब आपका भगवान से। रिश्ता जुड़ जाने के बाद तदरूप और आपको स्वरूप बता देते हैं। ध्यान करने का वो ध्येय है, और गेय के लिए तत् परंपरा अनुसार उस उपासना को पुष्टि करने वाली शास्त्रों को सत शास्त्र कहा गया है। वैसे तो हमारे सनातन शास्त्र विशाल है, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 महापुराण, स्मृति आदि, ऐसे गिनती करने जाओ तो बबारे कितने सारे हैं। और उसमें शैव शास्त्र, शाक्त शास्त्र, वैष्णवी शास्त्र, गणपत्य शास्त्र, सौर्य शास्त्र, इसके आगम भी भिन्न भिन्न है। आप यूं कहोगे कि वेद व्यास जी के लिखा हुआ है और शास्त्र, ऐसा कह के आप सभी शास्त्र को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी उपासना परंपरा, गुरु परंपरा अनुसार के शास्त्र को ही ग्रहण करना होगा, अन्यथा आपका उपासना गड़बड़ा जाएगा। आप श्री राम उपासक होकर यदि आप रामायण अध्ययन न करेंगे और देवी भागवत अध्ययन करने जाएंगे तो देवी भागवत में कहा है देवी ही सर्वेश्वरी है। आप विष्णु पुराण पढ़ोगे विष्णु ही सर्वेश्वर हैं। आप गणेश पुराण पढ़ोगे गणेश ही सर्वेश्वर हैं। फिर आप कह उठते अरे ये पुराण में ऐसा क्यों कहा गया, तो उसकी कारण परंपरा के हिसाब से है। हाँ, गणेश मार्गियों के लिए गणेश ही सर्वेश्वर हैं, शाक्त मार्गी के लिए शक्ति ही सर्वेश्वरी है, वैष्णवों के लिए विष्णु ही सर्वेश्वर हैं, शैवों के लिए शिव ही सर्वेश्वर हैं।
इसलिए अपने इष्टों को प्रतिपादन करने वाला, अपने मंत्रों को प्रतिपादन करने वाला, इष्ट के स्वरूप को, इष्ट के ऋषि को प्रतिपादन करने वाला शास्त्रों को सत शास्त्र शिष्य के लिए कहा गया है। ये बात को आप ध्यान रखो और सत्संग भी उन्हीं को सुनो।